तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल .com।

0: Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info at leicaradio.com.
1: Abhijan, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath? Ye faisla mera tha. Bhugat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu. Kuch nahi kar pa raha hu.
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैफको फूड्स.
0: We are Leica Radio.
5: Leica Radio.
0: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. This is Leica Radio. Greater Manchester. Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
6: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 जी टीवी HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: right away. This is Leica Radio Greater Manchester. Send us your feedback on our programmes and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. Leica Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicamedia.co.uk.
1: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया.
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
5: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
6: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस. उत्सव प्लस स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE 392.
7: प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय वाइटा बायोटिक्स.
8: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Wake up. Feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
9: Leica Radio. This is Leica Radio.
0: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
9: This is Leica Radio.
0: Greater Manchester.
9: Leica Radio.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 8222. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
4: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
5: We'd love to know what you think of your new Laika Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@laikaradio.com. That's info@laikaradio.com. This is Laika Radio Greater Manchester. The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Laika Radio.
6: This is Laika Radio
5: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
6: This is Laika Radio
5: Greater Manchester.
6: It's Laika Radio.
7: Morning, Donny. Today's Ghana is so easy. Jhuti khai thi kasam jani bhai nahi. ओ झूठी खाई थी कसम जाने भाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में वो आई नहीं।
8: झूठी खाई थी कसम जाने भाई नहीं, झूठी खाई थी कसम...

0: जी हाँ, दिन अगर सुहाना है तो हम दीवाने हैं। जिंदगी की एक और हसीन सुहानी सी सुबह, जुमेरात की सुबह, आज ही थर्सडे मॉर्निंग, बैक टू बैक दो गाने। तीसरा गाना जरा मुख्तलिफ मेरी पसंद का होगा।
1: दिन जो सुहाने हैं
0: तो लाइक आवर रेडियो।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

बस भाई बस सारे फ्लोहार। अभी तो नाश्ता किया है, क्या क्या खिलाओगे यार सुबह सुबह? जुमरात की सुबह और प्रोग्राम के पहले हिस्से का पहला पंजाबी सॉन्ग

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Right, Vinay, India, apne pyaron ko paise bhejne ke liye aaj ke rate de rahe hain SBI wale 128 rupees 8 paise.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
1: Right, Janab. Ab aapko batayenge hum क्रिकेट अपडेट. लेकिन क्रिकेट अपडेट आपको क्या बताएं, ये बता सकते हैं कि कल मैच हुआ था कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान, और ये मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया था. 194 रन बनाए थे और चार खिलाड़ी उनके आउट हुए थे. और आज मैच होगा जनाब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान, और ये मैच शुरू होगा तकरीबन कोई 4.5 घंटे के बाद.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Leica Radio.
1: जी हाँ, Leica Radio Greater Manchester. खुशामदीद. शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम, अपने शो बज़्मे ताविश की. रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो मेरी और आपके दिलों के भेद खूब जानता है. सुनते कानों और काम करते हाथों, आप सुन रहे हैं लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से मेरे प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो, ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो. मंडे टू फ्राइडे मेरी आपकी मुलाकात होती है रोजाना मेरी गर्म गर्म चाय की प्याली के साथ. ये सकप ऑफ टीवी दिबने ताबिश मेरे खाने के वक्त तक, दोपहर के लंच टाइम तक, यानी 1 बजे तक. मई महीने की आज 14 तारीख है. हमारी डायरी का पन्ना आज भी सूना है, सन्नाटा है, खाली है, एम्प्टी. अगर उसमें कुछ आप भरना चाहें, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो आप मुझे बता सकते हैं. आप में से किसी की आज बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई भी खुशी का लम्हा, या शायद आप भी मेरी तरह डायरी लिखने के आदी हों, तो शायद आपकी डायरी के पन्ने पे कुछ लिखा हो कई बरस पहले. बता दीजिए क्या लिखा था आपने. घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, छुट्टी का दिन मना रहे हैं, अभी हॉलीडे पे जाने के इम्कानात हैं, गर्मियां हैं, शुरू हो रही हैं, आधी से ज्यादा दुनिया गर्म गर्म है, गर्मी में है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. रॉबिन भाई ड्राइव कर रहे हैं, काफी दिनों की छुट्टियों पे जा रहे हैं न्यूयॉर्क से, और सर्विस पे खड़े हैं और कॉफी पी रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. कैनेडा की यात्री पे निकले हैं रॉबिन भाई. ड्राइव से सेफ, बिल्कुल अपने आप ख्याल रखिएगा ध्यान से. कहते हैं हम तो वो जफा गजीदा हैं साहब. चंदा की इस प्यारी सी बात के साथ तो पाकिस्तानी कारकुन ही के नाम करेंगे. हम तो वो जफा गजीदा हैं साहब, जो अब मुस्कुराहटों में भी, जो अब मुस्कुराहटों में भी फ्रेब ढूंढते हैं. मलिक तरन्नम ने उड़ जहां की आवाज का बड़ा ही मधुर सॉन्ग, फिल्म का नाम कोयल. थर्सडे मॉर्निंग, वही जुमेरात जुबुद के बाद और जुमे से पहले आती है.

0: Radio. मैं की फिजाएं गाती हवाएं सब के सब आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया उमर फारूक, बहुत अरसे के बाद उमर फारूक ने हमें ज्वाइन किया दोबारा। तमाम सुनने वालों के कुछ नाम अभी लेते हैं, कुछ नाम बाद में ले लेंगे। कराची में हमारे साथ निभाएंगे फरीद भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में आसिम का और फरीद भाई का और चंदा का बड़ा हाथ होता है। बहुत सारे साथी हैं, अगर किसी का नाम ना लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। सभी कुछ ना कुछ भेजते हैं, तबस्सुम हमें बहुत कुछ भेजती हैं, गजाला जी भी हमारी बहन को बहुत कुछ भेजती हैं, बहुत कुछ, और सबका सब शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीमा भाई वालेकुम सलाम, सेफ ड्राइव। चौधरी अयाज भाई हमें सुनते हैं रोजाना, अयाज भाई वालेकुम सलाम। चौधरी ब्रादरान, चौधरी जमशेद और नवाज चौधरी ब्लैकपूल में। खालिद महमूद भाई हमारे साथ होते हैं नेल्सन में रोजाना, और ब्रैंडले में नौशाद अली भाई। कजोरी जी वेलकम, मैडम नूर जहां का गीत हो और आपका फीडबैक ना, ऐसा हो नहीं सकता। साजिदा सुमर हमारे साथ होंगी जी प्रेस्टन में जाहिद अब्बास भाई, वल्ली भाई, अतीक सुमर और खुशबू, शकील भाई और मलिका। बरी में हमारे साथ निभाएंगी चंदा, अमन, निगहत और लेला, और रोजडेल में यासर।
1: ये है
2: Laika Radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
1: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
1: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
9: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
8: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: Next, Ravina Khan with the magazine show, Laika Radio, Greater Manchester. Ibn Tabish on Laika Radio, Greater Manchester.
11: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

पहचान नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: हैं जो न जाने क्या कुछ करके दिखा दें, दो नहीं दो को दो चार नहीं बल्कि पांच बना दें।
1: Like a radio.
0: हाँ जी, दो और दो पांच। ड्राइव केयरफुली रोबिन भाई, जहां कहीं भी इस वक्त आप सफर कर रहे हैं, हमारी दोस्ती का एक सफर है साहब। गुज़िश्ता 17-18 बरस हो गए मुझे इस यहाँ इस स्टूडियो में, इस बिल्डिंग में, यहाँ आपके साथ गुफ्तगुशनीद करते हुए और प्रोग्राम करते हुए। अपनी डायरी के पन्ने पे बात हो रही थी डायरी पे लिखने की, तो फरीद भाई ने अपनी डायरी खोली। कराची में हमें बताया कि ताबिश भाई आज के दिन 14 फरवरी 2021 को पहली मरतबा हमारा आपके नंबरों का तबादला हुआ था और एशियन साउंड रेडियो पर मैंने आपको पहली मरतबा सुना था, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। बिला नागा कोई ऑप्शन नहीं होती। हाँ जी, हमारी डायरी के पन्ने पे, हमारे रजिस्टर में वाकई आपकी गैर हाजिरी कभी नहीं होती, और कभी अगर हो जाए तो मुझे फिर बहुत परेशानी लाहक हो जाती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जरीन आश्चर्य में हमारे साथ हैं ड्राइव के दौरान, कहती है मुझे भी दो और दो पांच बनाना आता है। Oh my God. और फरजाना हमारे साथ हैं जी वारिंगटन में, रुखसाना आमिर काम पे जाने की तैयारी में है और काम पे जाते हुए हमें सुनेंगी, बहुत शुक्रिया रुखसाना। अदनान हमारे साथ हैं मुस्तकिल रॉजडेल में, कामरान भाई आपका बेहद शुक्रिया। गुलाम अली भाई ब्लैकबर्न में, और ब्लैकबर्न में हमारे साथ होती हैं शमीम बानो बेगानी, और लतीफ भाई हमारे साथ होते हैं रोजाना वॉली रेंज में।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर फॉर्मली नोन एज एशियन साउंड रेडियो।
0: और अब एक लड़का और एक लड़की

0: हैं दोनों गाने थे बैक टू बैक कुमार सानू के और अब हैं उदित नारायण और सपना मुखर्जी।
1: कहते कहते चुप हो जाओ।
0: जी हाँ जी, नजर नजर की बात है और नजर के सामने कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ आपकी नजरों के सामने होता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। Once again, खुशामदीद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर से रायका रेडियो।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: शिखर रेडियो। तुम्हारे लिए इस दिल में कितनी मरव्वत है, इतनी मरव्वत कौन करेगा, कहाँ पाओगे। बशीर अहमद मायनाज गुलकार पाकिस्तान के, और ये सॉन्ग और बशीर अहमद की आवाज सुनने के लिए हमसे कहा गया था बोल्टन से सहर आपने, आपको भी इस दौर के वो तमाम गीत बहुत अच्छे लगते हैं। पीटीवी का वो जमाना, बशीर अहमद, मुजीब आलम, रुबीना बदर, निगहत अकबर। एक लम्हे के लिए खामोशी सी तारी हो गई, तो खामोशी पे बड़ी अच्छी बात गजाला बहन ने लिख के भेजी, कहेंगे ताबिज खामोशी हमेशा सुकून की अलामत नहीं होती। कहते हैं ना इंसान कभी कभी कहता है बस चुप हो जाओ, मुझे खामोश रहने दो, मुझे सुकून चाहिए। असल में खामोशी हमेशा सुकून की अलामत नहीं होती, कभी कभी ये उस थकन का नतीजा भी होती है जो दूसरों को समझाते बुझाते समझाते रूह तक सराहियत कर जाती है। इंसान तब नहीं हारता जब वो बोल रहा होता है, वो तब हारता है जब वो बहस और खुद को वाजे करना छोड़ देता है।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी हाँ जी, करेंसी के रेट अमेरिकन डॉलर 1.35, इंडियन रुपीज में 129.50, पाकिस्तानी रुपीज में 377.86, बांग्लादेशी टका 166.80, श्रीलंकन रुपीज 438.81 और अफगानी रुपीज 86.54।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LEICA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: सोने का भाव हमारे यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 111.66 पेनिया यानी 111.60 पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव है 41,050 रुपए, 41,050 रुपीस ओनली।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency.

0: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.
1: जी हाँ, और अब खामोश खामोश रहते रहते एक कहानी मुझे याद आई और सोचा कि आपको भी सुना दूं।

0: Riker Radio.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
4: Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person? Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12th to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Laika Radio.
6: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद.
7: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
6: जेमिन्स फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते. रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161-250-8222 or sales@leicamedia.co.uk. Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
9: जी हाँ, वेलकम बैक. और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का सबसे खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम अमर प्रेम. और आज न जाने क्यों मौसम की मुनासिबत से खामोशी को तोड़ा है मेरे बहुत से पुराने लिसनर्स ने. नईम भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें सुन रहे हैं. और मेरे मजीद खामोश लिसनर्स,

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Right, जनाब एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए एसबीआई वालों का पैगाम इनकी किसी ब्रांच में जा सकते हैं आप या ऑनलाइन या इनके मोबाइल ऐप के जरिए योनो एसबीआई मोबाइल ऐप आज का रेट 128.08 रुपए.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Greater Manchester. India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
2: Oh, haan ji, aapko jaise ki humne pehle bataya tha ki kal jo match hua tha, Royal Challenger Bengaluru aur Kolkata Knight Riders ke darmiyan match hua tha kal, jo ki jeet liya tha Royal Challenger Bengaluru ne aur runs banaye the 194 runs और चार खिलाड़ी उनके आउट हुए थे. और अब जो मैच होगा तकरीबन कोई 3.25 घंटे के बाद वो होगा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. दिस इज Leica Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए.
12: अरे समझो, हो गया. रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी. सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ. रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी.
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Right, जनाब, वेलकम बैक. हल्की सी धूप की किरण है जो निकलने की नाकाम कोशिश कर रही है। अब क्या करें, कोशिश तो कहते हैं कोशिश करने से सब कुछ होता है। आसिम ने आज सोचा कि आज खामोश लिसनर बन के देखते हैं कि ताबिश भाई याद करते हैं कि नहीं करते हैं। हम तो बहुत देर से आपको याद कर रहे हैं और आप ही तो कहते हो कि याद तो उसे किया जाता है जो जिसे आप भूल जाएं। तो मकई की रोटी और सरसों का साग और लस्सी और अचार, ये खाली पिक्चर भेजी है तुमने या वाकई ये तुम सब खा रहे हो। और आगे आपने लिखा कि सो दिल भी अगर हमारे होते, सो दिल भी अगर हमारे होते तो कसम ले लो हम बस तुम्हारे होते। आए आए आए आए मेरे तमाम चाहने वालों के नाम, हिट पर हिट। इससे पहले किशोर कुमार थी और अब है मोहम्मद रफी।

और ऐसा है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। और तुम्हारा तो पता नहीं मगर मेरा दिल बहुत तरसता है तुमसे बात करने को। पैगाम रसानी का भी एक सिलसिला है जो कभी कभी प्रेजेंटर चलाता है। हाँ जी, ऐसा भी है। मीरपुर आजाद कश्मीर में, कश्मीर में हमारी बहना होती हैं, छोटी सी जिद्दी हैं वो भी, और जिनके लिए वो रोजाना पैगाम भेजती हैं वो भी जिद्दी है। बहुत अच्छा लगा अदनान तुम्हें ये गाना, मुझे छू रही है तेरी नर्म सांसें। कजूरी जी आपको, और रॉबिन भाई आपने कहा मैं रस्ते में रुका ताबिश भाई, और एक सर्विस स्टेशन पे मैंने सोचा कि कॉफी पी लूं और थोड़ा सा गाड़ी ठंडी हो जाए। वहां पे आमतौर पे ये होता है मोटरवेज पे, यूरोप कंट्रीज में या अमेरिका, कनाडा या यूके भर में कहीं भी आप मोटरवेज पे जाएं तो जाहिर है कि इंग्लिश पीपल हमें नजर आते हैं वहां सर्विस करने वाले, सर्विस देने वाले। लेकिन कोई इत्तेफाक से आपको कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी नजर आ जाए, कितना अच्छा लगता है ना। आपने कहा वहां एक लड़की हमें मिली ताबिश भाई, कोई पाकिस्तानी गुजरात की रहने वाली, उसने हमें कॉफी दी, सर्व किया और बहुत उम्दा उसने हमें सैंडविच खिलाया, जबरदस्त। कोई बात नहीं, आप घूमने फिरने जाएं, खूब आवारागर्दी करें। रॉबिन भाई नेक्स्ट टूर में मैं होऊंगा आपके साथ, ये वादा कीजिए। हाँ

0: जी गुड आफ्टरनून, जुमेरात की दोपहर, बैक टू बैक दो गाने और तीसरे गाने में भी दिल का ही जिक्र होगा। आखिर इस कमबख्त दिल का किया क्या जाए, ये ना मेरे बस में है ना आपके बस में।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और बात यह है कि दिल तो दिल है साहब, दिल का एतबार क्या कीजिए। मेरा लंच टाइम हो गया।

मुझ पे कायनात खुली है और कायनात के बस एक सिरे पे मैंने जो आवाज सुनी

0: कोई मोहब्बत है, और कहते हैं कि कुछ तो ये दिल भी है तन्हाई पसंद, और उस पर उम्र भर दोस्त बनाना नहीं आया मुझको। मुझ पे कायनात खुली है। बहुत सारे साथी दोस्तों को ये गजल कहूं या नज्म कहूं सजादली की, राहिला जी कहने लगी कि मैं सोच रही थी कल से कि इस हफ्ते आपने सजादली को शामिल नहीं किया, देख लीजिए हम दिलों में झांक लेते हैं, आपने सोचा और हमने कर दिखाया। इससे पहले जो सॉन्ग चल रहा था मेहदी हसन साहब का, वो आपने मुझे लिख के भेजा था, मैंने देर से देखा आपका मैसेज, आपने कहा बस ये सॉन्ग मेरा। रियली चैलेंज ये आपका हुआ। और अबरार बहुत देर से ज्वाइन किया है आज आपने, अबरार कहाँ लेट थे आप, और शहजाद आपने भी आज लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। हमजा खुश आमदीद, वालेकुम सलाम, जीते रहो। और खुशबू अब खा रही हैं विलायती लंच, जबकि मुझे कड़ी पकौड़ी की पिक्चर भेजी है इंतजार हुसैन भाई आपने। और
1: currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, करेंसी के रेट एक बार फिर से आपको बताऊं, अमेरिकन डॉलर 1.35, इंडियन रुपीज में 129.50, पाकिस्तानी रुपीज में 377.86, बांग्लादेशी टका 166.80, श्रीलंकन रुपीज 438.01, और अफगानी रुपीज 86.54।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, सोने का भाव एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 111.60 पेनिया, 111.60 पेंस पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट आज सोने का भाव है 41,050 रुपए।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Ye hai Leica Radio. Leica
0: Radio. जी हाँ जी, ये है Leica Radio, और आपको बता दें एक लाइव रीड आपको बतानी होती है रोजाना, कम से कम कोई एक इनमें से मुझे आपको पढ़ के सुनाना है। आतिफ असलम आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, आपको बता दें कि Leica Radio Network is the exclusive radio partner of the Atif Aslam London concert taking place on Sunday 14 June at the O2 London. Ticket available at AXS ya venue par.
2: ये है Leica Radio,
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन Southall Travel?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाई जरूर Southall Travel।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic

0: legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
1: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: जी हाँ जी, artist of the week इस हफ्ते की हमारी हैं माधुरी दीक्षित और ज़हीर लखेरा भाई हमारे दोस्त हैं. वो उनकी पत्नी दोनों सफर कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और हमारा पैगाम सुन रहे हैं.

0: जी हाँ, माधुरी दीक्षित हमारे इस हफ्ते की आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। कल उनकी बर्थडे मनाएंगे हम। और फिल्म का नाम था पुकार। गा रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पोडवाल, और इस गीत को हम नाम करेंगे जहीर लखेरा भाई के। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं ये। जहीर भाई, क्या आवाज है आपकी भाई, कम सुना रहे हैं कोई अच्छी सी महफिल में अच्छा सा गाना। फिलहाल तो जो गाने हम आपको सुना रहे हैं वो सुनते सुनते लंदन जाइए। अच्छा जी, लेट आने वालों को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? कहते हैं कायनात खामोश थी, कायनात खामोश थी, फिर तेरी सदा आई और तारों ने झुककर जैसे कोई दुआ गाई। कायनात खामोश थी और फिर तेरी सदा आई और तारों ने झुककर जैसे कोई दुआ मांगी। और चांद रात नहीं, चांद ने रात भर में यही राज रखा, चांद ने रात भर में यही राज रखा कि इंसान छोटा सही ख्वाब मगर बड़ा रखा। अरे वाह शहजाद, हमें सुन रहे हैं शहजाद, थैंक यू साथ निभाने का। और कहते हैं दास्तान मोहब्बत इतनी सी है, दास्तान मोहब्बत इतनी सी है कि उसकी खातिर उसी को छोड़ दिया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज का रेट दे रहे हैं SBI वाले इंडियन रुपीस में 128 रुपए 8 पैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester.
0: हाँ जी, this is Leica Radio, Greater Manchester. दोपहर हो गई। अच्छा जी, कहीं पे गुड मॉर्निंग मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, मैं तो आपसे गुड आफ्टरनून कहता हूँ, मगर कहीं गुड मॉर्निंग है, कहीं गुड इवनिंग है। कहते हैं जिस पे गुजरी है वही जानता है, जिस पे गुजरी है वही जानता है, दिल तसल्लियों से भला कहाँ मानता है। और अब चलते चलते एक बहुत खूबसूरत पुराना गीत

0: आज है फिल्म का नाम था शराफत और नैया नूर और अखलाक अहमद। मेरे संग तो कोई नहीं चलेगा, मैं तो सुबह अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा।
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: फ्रेंड जनाब, आपको बता दें कि बस प्रोग्राम के अगले हिस्से में रूबीना खान आपको बताएंगी इसका स्कोर, जो टीम खेलेगी तकरीबन कोई दो घंटे के बाद पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान ये मैच होगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
10: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like sabudana khichdi, shira, poha, bhaji, veg biryani, dal bhat are ready to serve on your plate.
9: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Jamin Foods.
1: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel. A Leica Radio classic plays now. Now.
0: जी हाँ, अब ताविश ने जाने जाने की है और जाना तो पड़ेगा, और जाएंगे तो फिर यकीनन कल भी आएंगे आपकी दुआओं के साए में। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम।

जी कहाँ खो गए यारो दोस्तों, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे वक्त का वाकई पता नहीं चलता। मुझे जब मैसेज आते हैं दो तीन के, अच्छा तो ताविश भाई तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना। अच्छा भाई, रेडियो पे पता चला कि जहीर लखेरा भाई लंदन जा रहे हैं, तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो उनके भी दोस्त हैं, तो सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा सेफ जर्नी। फरीदा भाभी को भी उन्होंने सलाम कहा है और कहा है कि दोनों में अभी जा रहे हैं पामेला की तरफ से। पामेला जी वेलकम। आप भी हमें चुपके चुपके सुन लेती हैं कहीं ना कहीं, है ना, ड्राइव के दौरान। कहते हैं कि लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको, बस अच्छी सी बात के साथ रुखसत होते हैं। फिर आप इस हफ्ते का कल लास्ट जो होगा जुमे का, लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। और कहते हैं किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं, किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं, मैं हर एक ख्याल में, मेरे हर एक ख्याल में तेरा ख्याल होता है। बहुत शुक्रिया भाई, जहां कहीं भी आप थे। बहुत सारे नाम हैं, आप सबके नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। कहते हैं कि कायनात का ये उसूल है कि यहाँ कुछ भी इत्तेफाकिया नहीं होता। हाँ, कायनात का ये उसूल है कि यहाँ कुछ भी इत्तेफाकिया नहीं होता, खास तौर पर लोगों का एक दूसरे की जिंदगी में आना। जैसे परिंदे अपने ही सफ के साथ उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, एक रोम में जाके आपने देखा होगा तरतीब के साथ, like radio. एक तरतीब होती है परिंदों में, एक साथ उड़ते हैं और एक साथ उड़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसानी रूहें भी अपनी जैसी तड़प, सच्चाई और मिजाज रखने वालों की तरफ मकना तीसी कशिश के साथ खींचती हैं। वही कशिश जो मुझे कल सुबह लेकर आएगी। फी अमान अल्लाह, ते खुदा पामान।

0: Athena Khan.
1: Leica Radio.
0: Leica Radio.
2: Program ka first hour aur back to back do songs abhi aapne sune. उम्मीद करती हूँ आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और रियली आई मीन इट जब मैं ये कहती हूँ कि वाकई बड़ी कोशिश से सिलेक्शन की जाती है कि वर्डिंग भी अच्छी हो गीत भी अच्छा हो तो मखमली सॉन्ग मुझे अच्छा लगा. मैंने सोचा आपके लिए भी प्ले करूँ, खुद तो हम सुन ही लेते हैं आप लोगों के लिए प्ले करूँ कि आपको भी अच्छा लगे. श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ें थी मखमली में. सरबत प्रीति वाज, ये कोई फिल्म का नाम जरा मैं हो सकता है गलत ले रही हूँ लेकिन बहरहाल सॉन्ग प्यारा था और श्रेया घोषाल एंड अरिजीत सिंह की आवाज़ें थी. और उससे पहले भी बैक टू बैक आपने अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनी फिर से. फिर से हम मौजूद हैं यहाँ पर लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर के प्लेटफॉर्म पर और आप सुन रहे हैं द मैगजीन शो. आज भी फुली जैम पैक प्रोग्राम होगा, आपसे बहुत सी बातें होंगी, बहुत से मैसेजेस आपके मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी और जो हमारे फीचर्स हैं पहले दो दिन यानी मंडे ट्यूसडे होती है एक शॉर्ट स्टोरी और फिर वेंसडे एंड थर्सडे होता है एक कोर्ट का डे जो कि हम आपके लिए प्ले करते हैं लास्ट आवर में यानी थर्ड एंड फाइनल आवर में. और इसके साथ बहुत सी बातें भी हो सकती हैं, होती हैं, खबर पर नज़र भी रहती है, बड़ी तेज़ नज़र रखते सिक्स बाय सिक्स यस विद चश्मा विद एन के यस. अब एक और गीत की तरफ लेके चलूंगी, गीतों का सिलसिला भी जारी रहेगा और बड़ी ढेर सारी बातें भी.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक है, नो डाउट अबाउट इट. और जो बेस्ट डायलॉग है इसमें, ड्यूट होता है लेकिन जो इसमें सवाल जवाब है, वल्ला फर्स्ट क्लास.
1: फरमाइए
0: बोलिए. जरूर बोलने का वक्त है ये.
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स परफेक्ट फॉर माय बिजी डे. अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
3: द मैगजीन शो विद रुबीना खान.
4: To Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre, 12th to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner, Laika Radio.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सफल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: May को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
11: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
13: आतिफ असलम लाइव इन द UK.
14: झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम.
15: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
13: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Laika Radio.
16: Laika Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards. This Friday at the Manchester Deansgate Hotel.
17: Punjab, the biggest tunes.

0: की आपका स्टेशन।
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल .com।

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: Robina Khan, now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio Greater Manchester.
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: मोहम्मद रफी की आवाज में शुक्रिया, इतना शुक्रिया, अच्छी बात है, आपके मैसेज भी शुक्रिया के आ रहे हैं अच्छी बात है। रबीना खान
1: Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Film ka naam hai Sardar ka Grandson aur geet Dil Nahi Todna.

0: और अब कुछ ही देर में सुनेंगे आप पाकिस्तानी सॉन्ग लेकिन ना जाना।
1: This is Laika Radio. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Laika Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही सेंसिटिव। ओहो, फिल्म का नाम है अरमान, माला की आवाज, माला बेगम कहते थे।

0: Asia Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: वेदर रिपोर्ट वेदर फोरकास्ट सुन लीजिएगा. आज मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में ज्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, तमाम हल्की बारिश का इम्कान है, क्लाउडी डे होगा और सन इंटरवल्स भी रहेंगे. ये थी आपके लिए वेदर रिपोर्ट.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
1: प्रोग्राम का सेकेंड आवर शुरू होने को है और हम आपके साथ द मैगजीन शो लेकर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैव अ वेरी गुड आफ्टरनून.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica.

0: बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाजें और कोई मैजिक स्टूडियो में और जहां भी सुना जा रहा है.
1: रबीना खान,
0: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में हूँ. रबीना खान द मैगजीन शो लेकर, और इस वक्त बिल्कुल हक बनता है और वजह बनती है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर दूं और आप लोगों को आपकी बातें या आपने जो फूल भेजे हैं. अस्सलाम वालेकुम रबीना जी, शुक्रिया जी. फरजाना, आपने मैसेज किया है. वेलकम रबीना लिखा है. अब आपकी आपने पंजाबी में रोमन पंजाबी लिखी है और नाम नहीं लिखा, ये तो फिर जाति की बात है. नाम लिखिए तो मैं कुछ जानूं और बता सकूं कि ये किसने क्या लिखा है. सिर्फ इमोजी और वेलकम रवीना लिखा है, सो नो प्रॉब्लम. आप ऐसे खुश तो ऐसे खुश, तो फैन आपका मैसेज है. सलाम खान साहब, आपने लिखा है इंतजार कर रहे थे कि आप आए. सो जी, हम आए हुए एक घंटा तकरीबन 29 मिनट हो गए और आपने प्रोग्राम के शुरू में ही मैसेज किया था, मतलब ये है कि बात क्लियर होनी चाहिए. सही है जी, सलाम गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है. एंड खान आपने मैसेज किया है, शुक्रिया बहुत बहुत. और फिर जी रुखसाना अफजल आपने मैसेज किया है, ये जो आपने मैसेज किया है ना कि बुक्स माइंड्स एंड अम्ब्रेलाज ओनली वर्क इफ दे आर ओपन, ये बहुत जबरदस्त है. वो जो स्काई डाइविंग होती है ना, और जब वो सारा अम्ब्रेला और सब कुछ बिछा के रखते हैं और उस वक्त जो उनकी रोप्स होती हैं अगर वो ना खुलें तो आप कुछ नहीं कर सकते. इसी तरह माइंड ओपन होते हैं जब उनकी तारें जो हैं खुलती हैं और आपका दिमाग खुला होता है. आपने बहुत अच्छा लिखा. और एक जो है लतीफ़ा भी भेजा, शोहर आज सब्जी में नमक ज़्यादा है, बीवी नहीं नमक पूरा है आज सब्जी कम है. और इसकी टैगलाइन है कि औरतें कभी, बीवियां कभी गलत नहीं होती. एसपी सज्जाद आपका मैसेज शामिल कर लेती हूँ. और उस्मान तबस्सुम आपने रिएक्ट किया है, ब्यूटीफुल आपने मैसेज किया है, शुक्रिया बहुत बहुत.
1: ये है
2: Like our radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: सच्ची करेंसी एक्सचेंज रेट, वन पाउंड का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में इज 1.35, इंडियन 129.50, पाकिस्तानी 377.86, बांग्लादेशी 166.80, श्रीलंकन 438 और अफगानी 86.54 अफगानीज.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
2: LIKA Radio.
1: A LIKA Radio classic. Plays now.
0: अयूब चौहान साहब आपका मैसेज मिला है, आप सीधी रिक्वेस्ट ही करते हैं जाते जाते भी. बहरहाल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया. तारिक प्लगबन से आपने याद किया है, आपका भी शुक्रिया. और आप भी शुरू से ही साथ हैं. लेट्स मेक इट क्लियर. और ये गीत और वो सभी गीत जो आपको अच्छे लगे हैं अभी तक, बेहद खूबसूरत गीत है आरजू फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है. बेदर्दी बाल मत तुझको.

0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: चलिए एक खूबसूरत क्लासिक सॉन्ग सुना. Another खूबसूरत सॉन्ग. चांद और चांदनी फिल्म का नाम है.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: So, अगर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया के लिए सो आपको कम्पेटिटिव रेट मिलेंगे. आज का रेट है 129.50 और यूनो एसबीआई यूके के जरिए मनी ट्रांसफर कीजिए वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
1: तो जी धर्मशाला में मैच शुरू होने को है और पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच होगा और मुंबई इंडियंस ने चूज किया है फील्डिंग के लिए और मैच अभी शुरू होने ही वाला है.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: कॉल सफ्टोल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर.
11: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
0: Laika Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel. 3 big stations, 1 large network. We are Laika Radio in
1: London,
0: now in Greater Manchester.
1: Le jayega hame 3 baje ki khabron ki taraf.

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: चलिए जी, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से के पहले दो गीत आपने सुने, वो अजनबी शिल्पा राव और मिथुन की आवाजें थी, द ट्रेन फिल्म का नाम था, 2007 की ये फिल्म थी। और उससे पहले जो गीत आपने सुना वो लिया था मैंने बर्दाश्त फिल्म से, तो कि सन 2004 की फिल्म थी और उसमें आवाजें थी उदित नारायण एंड अलका याग्निक की, सिलसिले मुलाकातों के। सो दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने सुने, उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं आप हैं जबरदस्त हैं, फैंटास्टिक हैं और आपके सब काम ठीक ठाक हो रहे होंगे। सो एक कुछ बातें होती हैं जो मतलब फिल्मी डायलॉग और ये वो लगे रहो मुन्ना भाई जब आप करते हैं तो फिर ऐसा ही दिल चाहता है कि बस लगे रहो, जो काम को शुरू किया है उसको ख़त्म तो करना है। तो आप जहाँ कहीं जो काम भी कर रहे हैं उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही तरीके से उसको अंजाम तक पहुँचा दें। वो कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना कि जिस चीज़ का अंजाम ना होता हो उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए, और अगर शुरू कर लिया है तो हर सूरत उसको फिर ख़त्म करना चाहिए। आज की जो कोट है वो मैं आपको अभी तो नहीं लेकिन कुछ देर में बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे बड़े दिल को लगी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जी हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करें, और एक इंग्लिश का जुमला है पुराने क्लासिक इंग्लिश में कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचाने। तो आज इसको लेकर के जो कोट मैंने आज आपको कोट करनी है उसके लिए मेरे साथ रहिएगा, दिल आपका खुश और बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग है, प्रैक्टिकल चीज उसमें बताई गई है। बात चीजें देर से पता चलती है लेकिन इट्स नेवर टू लेट, ये मेरा समझना है।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.

0: टेल गेटिंग फॉलो करना शुरू कर दें तो ये घटाएं आपको चांद पर ले जाएंगी ऐसा लगता है. बहुत ही आसमान ढके हुए हैं बादलों से, घटाओं से.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Quote of the day with Robina Khan. Like a radio.
0: आज की जो कोट है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई है जो लेट 19th और 20th अर्ली 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़ा नाम थे. स्कॉलर थे, थिंकर थे, प्ले राइटर थे और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के लिए बहुत मशहूर थे. आप सब लोग इनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं. नोबेल प्राइज विनर भी थे. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी हक बनता है उनका कि उनके नाम के साथ उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी मेंशन किया जाए. सो आज की जो उनकी कोट है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और वो यूं है कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ. जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, अमूमन हमें यही कहा जाता है कि अपने आप को खोजो, अपने आप को जानो, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिव और क्लियर वे है, तरीका है अपने आप को शेप देने का कि जस्ट क्रिएट योरसेल्फ. मुझे इतना ये ब्यूटीफुल लगा है. किसी भूल भलाइयों में नहीं जाना. आपके जहन में आपकी पर्सनालिटी का जो एक प्रोफाइल बनता है उसको क्रिएट करना शुरू कर दें. आप खुद ही अपने आप को जान लेंगे उस वक्त जब आप अपने आप को क्रिएट कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है. आप उसी के मुताबिक अपने आप को फॉर्मेट करें. और इट्स नेवर टू लेट. अगर इस वक्त मैं ये समझूं कि कोई जी अब तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अभी भी कभी भी वक्त जो है वो ऐसा नहीं है कि लेट हो गया है. किसी को नहीं पता कि कितनी जिंदगी बाकी है, तो उस जिंदगी को अपने हिसाब से क्रिएट करें.
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Aha, Malika Itranim Nurjahan ki awaz hai. Chand Mahi, teri raapai takni, takniya. अभी बादलों की घटाओं की बात हुई थी, अभी चांद, लेकिन यहाँ तो चंद माही है जी.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: इंडिया मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको कम्पेटिटिव रेट मिलेंगे जब आप योनो एसबीआई के जरिए मनी ट्रांसफर करते हैं योनो एसबीआई यूके वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. और आज का एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा 129.50.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
0: India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
1: तो जी आपको बता दें क्रिकेट मैच की तरफ स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है. आईपीएल 58 मैच हो रहा है धर्मशाला में और ये पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान हो रहा है. एम आई चूज टू फील्ड और अभी तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवर्स में रन स्कोर किए 96 और एक खिलाड़ी का उनका नुकसान हुआ है.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: वॉटू का गीत है 2025 और ये गीत एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। अभी रिज अंदर स्टूडियो में आया कह रहे हैं कि ये तो मेरा फेवरेट है। आवा जामा ब्यूटीफुल ट्रैक, मुझे खुद भी बहुत मैंने एंजॉय किया है इसको और मेरा दिल चाहता है कि आपने भी एंजॉय किया हो। म्यूजिक पोएट्री ऑल टुगेदर
1: रबीना खान
0: Like a Radio, Greater Manchester और The Magazine Show आप सुन रहे थे। मंडे टू थर्सडे रुबीना खान का साथ होता है आपकी आवाजों तक, आपकी गाड़ियों तक। अगर आप किचन में सुन रहे हैं, आप कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, लिविंग रूम में है, गार्डन में है, जहां कहीं आज आपने हमें सुना और मंडे टू थर्सडे सुना, जी ये तो एक शर्त है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीक का ये आज लास्ट प्रोग्राम, मंडे एक बार फिर आपके साथ में रहूंगी मंडे टू थर्सडे और बहुत से अच्छे गीत, बहुत सी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आऊंगी। या एक जाते जाते बात मेरे दिल को जो लगती है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। सारा खान जो है मुझे बड़ी मुझे पसंद है, उनकी सारी जो जर्नी है हर लिहाज से मुझे पसंद है। तो और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी माँ की बड़ी बड़े उनके साथ प्यार और दोस्ती सी फील होती है जो उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ। तो उन्होंने भी दुनिया देखी हुई है और सारा ने बड़ी अच्छी बात शेयर की सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में कि मेरा जो सफ़र था तो पहली दो फिल्में 2018 से शुरू किया सारा खान ने। तो उन्होंने कहा कि वो केदारनाथ थी जिसके गाने भी मुझे आप सबको पसंद थे। उन्होंने दो फिल्में बड़ी हिट फिल्में दी, उसके बाद दो फिल्में हिट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मदर ने पहले ही कह दिया था कि जो अचानक कामयाबी मिल जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उसके बारे में इंसान को ये खुशफहमी हो जाती है कि मैं तो हूँ ही कुछ ज़बरदस्त, कोई बड़ी कोई पाई की आला चीज़ हूँ। और हालांकि ऐसा होता नहीं है। कामयाबी असल में वो होती है जो आपको मेहनत मेहनत मेहनत मेहनत करते करते मिलती है, जो एक पूरा एक स्पैन होता है आपका लाइफ का। उसमें ज़ाहिर अप एंड डाउन आते हैं, हर फिल्म हिट नहीं हो सकती, हर बिजनेसमैन ऑल द टाइम जो है वो कामयाब नहीं होता। तो कामयाबी चलती रहती है, अप एंड डाउन होता है। लेकिन इसी नोट पर रुबीना खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। मंडे आफ्टरनून एक बार फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए बाय फॉर नाउ।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: This Eid ul Adha, share the joy no matter the distance. With you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
8: Rizcan, next with Drive.
9: Leica Radio.
8: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio Network, now the home of Leica Radio, Greater Manchester.

0: से
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जिंदगी वह सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग सिदायु टूथपेस्ट टेक्स इट टू अनदर लेवल क्लोव नीम हर्बल एक्टिव्स प्रॉपर आयुर्वेदिक केयर बट मॉडर्न एंड प्रीमियम फ्रेश ब्रेथ हेल्थी गम्स नो हार्श केमिकल्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द UK सिद्धायु आयुर्वेद दैट फिट्स योर लाइफ।
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Ek badhiya kadak garma garam chai mil jaye to aaye haaye maza aa jaye.
10: Are samjho ho gaya. Royal chai hai na, ab bhi ban jayegi. Sirf packet kholo aur garam pani mein ghol lo. Chai taiyar, wo bhi royal taste ke saath. Royal Chai, jhatpat, kahin bhi, kabhi bhi.
11: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
12: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel.
13: Hi, this is Akshay Kumar.
14: Hi, this is Akshay Kumar.
13: And you're listening to Leica Radio.
15: Leica Radio.
12: Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: relaxing at home.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सबटल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए
2: और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
8: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161 250 8222. दैट इज 0161 250 8222. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन.
11: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: थ्रिलिंग थर्सडे में स्वागत है आप सभी का इस इवनिंग शो में. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. पूछे भाई आप सबसे कैसे हैं आप सब. उफ बढ़िया है कि नहीं. होंगे ही. वीकेंड आ गया जी. बस शुरू हो गया. बस दो तीन घंटे और है ना फिर वीकेंड तो ऐसे ही शुरू हो गया. फ्राइडे आ गया. तो प्रोग्राम का आगाज हमने किया था तो बड़े ही अमेजिंग गीतों के साथ में. प्रेम दीवाने से पी पी पी पी पिया एनर्जेटिक सॉन्ग था है ना. उसके बाद में आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में तू तू है वही फ्रॉम ये वादा रहा. वादा करके गए थे आपसे कि आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे आके जो कि दिन भर से शुरू है. एंड नाउ विद दिस शो मस्ती मजा इंटरेक्शन गप सब सब का सब शुरू हो जाएगा. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. सारे के सारे हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं आइए जी आइए अपनी फटाफट हाजिरी लगाइए और फिर मैडम देगी आपको असाइनमेंट रोज की तरह. आज की असाइनमेंट क्या है. आज की असाइनमेंट है अगर आप रिलेशनशिप में हैं शादी हो चुकी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपकी लव मैरिज हुई है या क्या आपकी अरेंज मैरिज हुई है. एंड गिवन अ चांस अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई तो क्या आप लव मैरिज करना चाहेंगे या करना चाहते थे या परिस्थितियां क्या रही. व्हाटएवर अगर लव मैरिज था तो क्या अरेंज मैरिज आपके लिए ओके है और अरेंज मैरिज अगर हुआ है तो क्या लव मैरिज आपके लिए ओके है ना. बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है बट इफ गिवन अ चांस यू नो. अभी इतने सालों के बाद अपने अपने पार्टनर्स को आप खुलेआम बोल सकते हैं अरे यार इसे तो लव मैरिज अच्छा था और लव मैरिज वाले बोल सकते हैं इससे अच्छा तो मैं अरेंज मैरिज कर लेती. वॉट एवर इट इज जरूर हमें फटाफट मैसेज करके बताइए. एंड उफ वाले गीत एजाज जी जब आप उफ लिखते हैं ना हर गीत के बाद में आ उफ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपीस. याद रखिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप और ये भी SBI UK मोबाइल ऐप.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a radio. The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education and Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: You mean Subtle Travel?
5: Yes. देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
11: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
10: Jaymin Fryams, available at your nearest ethnic grocery stores.
12: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
1: Leica Radio, the exclusive radio partner of the Signature Awards, this Friday at the Manchester Deansgate Hotel.
13: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
14: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊँगा.
15: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
13: अरे कहाँ हो तुम?
14: हो हो, आलो आलो.
15: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
1: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 p.m. only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392. New hits on Leica Radio.

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 27 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. भाई मेरा सवाल जो है उस सवाल के जवाब में आप लोग जो अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, एक तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपनी इस जर्नी में मुझे हमराज बना के अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं. मैंने आप सबसे पूछा कि अगर लव मैरिज हुआ है तो क्या आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे, या जो भी है यार, अगर लव मैरिज हुआ है तो यार मैं अरेंज मैरिज कर लेता, और अरेंज है तो यार मैं लव मैरिज कर लेता. वेल, आप सभी ने अपनी अपनी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज मुझे बनाई हैं. जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं. स्पिरिचुअल लेवल पे क्या आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सेड कि आपके जो स्पाउस होते हैं, आपके जो बेटर हाफ होते हैं, कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म का कर्मा उनके साथ में कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं. द स्पिरिचुअल एंगल इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यस, जब आप अपनी स्टोरीज मुझे बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग भी अपनी अपनी शादियों के बारे में सोचते थे और लव मैरिज हुआ

0: हो जाएंगे, सच में कुछ नहीं लगता. बिल्कुल. somebody is saying who's this? This is सीमा जी, right? सीमा जी कह रही अश्विनी मेरी एग्जाम है यार, और मैं घर पे आई हूँ थकी आ रही, लेकिन तुम्हारा शो जो है इट मेक्स मी फील बेटर. ओह थैंक यू सो मच. ये जो आप लोगों के फीडबैक आते हैं ना, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे कंधे कितने झुक जाते हैं. कुछ आपके ध्यान में आ रहा है जब आप लोग ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हो तो? थैंक यू सो मच. बिल्कुल, हमारी आपकी जर्नी यहाँ पे चल रही है, गप्पे चल रही हैं, अपनी अपनी लव स्टोरीज, अपनी अपनी अरेंज मैरिज की स्टोरीज. बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ पे आइए, यहाँ पे गप्पे मारिए. क्यों मैंने ये टॉपिक बोला है, इसके बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में. नेक्स्ट ट्रैक यार, मतलब थोड़ा मीडियम से ऊपर वॉल्यूम करना है तो कर लीजिए, बिकॉज रॉकी फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत आप सबके लिए.
1: The Evening Show with Ashwini.

0: क्या बात है, क्या बात है. आप लोगों के रिस्पांस जिस तरीके से आ रहे हैं ना, मतलब मजा आ रहा है. एंड एजाज जी, आपकी तरह भी मैं इस गीत के लिए मैं भी कहने वाली हूँ, उफ, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है मुझे. दो लोग जब प्यार में होते हैं तो वो कितनी सुंदर तरीके से एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं. एंड दिस एक्चुअली हैपेंस ना, हम तुमसे मिले, फिर जुदा हो गए, फिर मिलके मिले. ऑल दिस अमेजिंग, लव दिस ट्रैक. दिस वॉज फ्रॉम रॉकी. अगला ट्रैक आप सबको सुना रही हूँ, एंड दैट इज यादों की बारात, आर पार फिल्म से. 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, सुमन कल्याणपुर की आवाज में. अब ऐसा है भाई कि शादी वाला टॉपिक चल ही रहा है आज तो कभी अर कभी पर.
1: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a
1: radio. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam, live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12 to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Leica Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayana ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
8: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
7: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
8: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
9: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
13: For £1, you'll get 128.29 Indian rupee, 373.32 Pakistani rupee, 435.94 Sri Lankan rupee, 164.52 Bangladeshi taka, 83.56 Afghani.
14: Leica Radio. Radio.
15: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
13: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
15: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
16: LIKA Radio.
15: Ashwini, brightening up your weeknights. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
13: Mumbai Indians and Punjab Kings ke beech mein match hua jisme Mumbai Indians won by 6 wickets.
15: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
13: जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. फर्स्ट आवर का फीचर यादों की बारात आप सबको सुनाया आर पार. आज का टॉपिक फर्स्ट आवर में चल रहा है लव मैरिज, अरेंज मैरिज. बहुत ही सुंदर कहानियां आप लोग सब मुझे सुना रहे हैं, थैंक यू सो मच. अच्छा, आज का मौसम जो है वर्षा रानी अपनी आ गई छम छम छम करते हुए, और बारिश आ रही है जा रही है, कल भी वही होने वाला है. तो जब बारिश आना जाना कर रही है तो एक गीत तो बनता है बारिश पे. लता मंगेशकर की आवाज में चुपके चुपके फिल्म से मैं आप सबको ये बहुत ही प्यारा गीत सुनाना चाहती हूँ जिसे फिल्माया गया है शर्मिला टैगोर पे. एंड और कौन थे भाई, धर्मेंद्र थे इस फिल्म में, है ना. चुपके चुपके अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन स्पेशली दिस ट्रैक, आई जस्ट लव दिस ट्रैक. वो पर्दे के पीछे खड़े होते हैं ना धर्मेंद्र जी, बड़ा मजा आता है. एंड अगला ट्रैक उसके बाद जो होगा, विच इज द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम ब्लफ मास्टर, मुकेश जी की आवाज में. सो जो मुकेश जी की आवाज में गाना सुनना चाह रहे थे, बिल्कुल आपके लिए भी आ रहा है. देखिये, पूरी वेरिएशन हम लाने की कोशिश करते हैं शोज में, और आप लोग इतना खुश हो कि हर एक गीत पे जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक आता है ना, तो एज आई सेड कि हमें भी बहुत बहुत मजा आता है. तो डिनर टाइम के साथ में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं शो, और हमेशा कहा जाता है कि खाते समय जो आप सोचते ना, वैसे आपका स्वभाव, वैसे आपका नेचर बनता है. तो आई एम श्योर कि बड़ा म्यूजिकल नेचर होगा आप सबका, है ना. एक तो लाइका गोल्ड सुन रहे हो आप यहाँ पे लंदन में, एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. एंजॉय द शो.
17: स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स. इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स एक्सपीरियंस अलग होता है. विजिट StarTours.co.uk.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:14 हो रखे हैं। इट्स 14:08। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड हमारी वेबसाइट पे एंड हमारे ऐप के थ्रू ग्लोबली आप जहां पे भी हमें सुन रहे हैं। तो सेकंड आवर में आपने हमने मार ली है एंट्री। थर्सडे है तो थ्रिलिंग थर्सडे के लिए कोई ना कोई गीत लेके आई है अश्विनी। 14 मई आज की डेट है। आधा साल तो नियरली निकल चुका है 2026 का। कैसे बीत रहा है बाय द वे ये साल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्टर्बिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है ऑल अराउंड, लेकिन जरूरी है कि कभी कभी हम अच्छी चीजों के बारे में भी बात कर ले जिंदगी में, कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज के बारे में भी बातें होती जाए। सो ब्राजील हैज इंट्रोड्यूस्ड डॉग थेरेपी प्रोग्राम्स इन हॉस्पिटल्स वेयर ट्रेन्ड डॉग्स विजिट पेशेंट्स टू ब्रिंग कंफर्ट एंड रिड्यूस पेन एंड एंजाइटी। इस गुड न्यूज के बारे में मैं जरूर इतना ऐड कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव अ डॉग इन माई हाउस। इट्स ऑलवेज सेड कि पीपल हु हैव डॉग दे कैन नॉट गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज इतना सेल्फलेस और इतना प्योर लव आपको मिलता है एनिमल्स की तरफ से। ह्यूमंस के प्यार में मिलावट होती है यार, मतलब ही पन होता है कहीं ना कहीं, है ना। एंड आप सभी ने यह एक्सपीरियंस किया है, हम सभी ने ये चीजों को एक्सपीरियंस किया, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ पेट इन द हाउस सेल्फलेस लव चाहते हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी आपको टिल द एंड तहे दिल से करनी होती है। मतलब आप अपने वक्त निकालना चाहते हैं अपने लिए, तो वो वक्त जो है उस वक्त में आपका ये पेट हमेशा आपके साथ रहेगा। दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंस स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट 7 years। आई एम जस्ट सो मच इन टू माई पेट डॉग एंड शी इज अ फैबुलस लैब्राडोर। शी इज अ ब्लैक फीमेल लैब्राडोर, पीच इज माई डॉग। एंड थेरेपी जो होती है ना, मतलब आपको जो लगता है ना कि अश्विनी इतने एंथुसियाज्म में यहाँ पे आके बैठती है, इतनी हैप्पी हैप्पी साउंड करती है, आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू माय डॉग।
1: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर फॉर्मली नोन एज एशियन साउंड रेडियो।
2: ये है
1: लाइका रेडियो SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 129 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: चलिए मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप लोग सभी अपने पेट्स की तस्वीरें भेज रहे हैं, किस तरीके से आपने उनकी उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए हैं, छोटे छोटे बेड्स भी हैं। दैट्स ब्यूटिफुल, आई एम लविंग। आपके पास अगर पेट्स हैं तो प्लीज उनकी पिक्चर्स मुझे भेजिए। आई रियली एंजॉय व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। समथिंग विच आई रेगुलरली लुक ऑन द रील्स इज एनिमल की रील्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पेट एनिमल्स की रील्स। मैंने मोस्ट ऑफ माय पेजेस इंसानों से ज्यादा तो मैंने एनिमल्स के पेजेस लाइक कर रखे हैं, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है कि कितने डेडिकेटेडली ये जो पेट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, और इनको प्यार की भाषा कितनी समझ में आती है। यू नो, बहुत बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज और रील्स मुझे देखना अच्छा लगता है। उसके बाद द मैक्स नंबर ऑफ रील्स एनिमल्स के बाद में मैं देखती हूँ छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कितना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप कितना भी स्ट्रेसफुल डे आपका रहे, कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे, जब ये रील्स आप देखते हैं ना एनिमल्स की और छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज की और छोटे जो बच्चों की, यू स्माइल फॉर श्योर। सो जरूर अपने मूड को अपलिफ्ट जब भी करना हो तो ये रील्स जरूर देखते चलिए। आ गए हैं हम इमोशन ऑफ द डे, इट्स थ्रिलिंग थर्सडे। थ्रिलिंग थर्सडे में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गीत मैं चुन के लाई हूँ कोहिनूर फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, मधुबन मिरादी का क्लासिकल ट्रैक आप सबके लिए।
1: ये है लाइका रेडियो। अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे।

0: Joker Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.26 Indian rupee, 373.29 Pakistani rupee, 435.9 Sri Lankan rupee, 164.48 Bangladeshi taka, 83.62 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Like a radio.
0: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
2: Leica Radio.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो भाई अभी टाइम हो चला है 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ, इवनिंग 7 to 10 PM. तो 3 घंटे मस्ती मजा गपशप होती है आपकी, हमारी यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, स्टोरीज होती है, खाने के पिक्चर्स होते हैं, साथ में चाय वाय भी आप लोग पिला देते हैं मुझे, मेरे हालचाल पूछते रहते हैं, अपने हालचाल बयां करते हैं. यही तो चाहिए, दैट इज व्हाट द शोज आर ऑल अबाउट. बिल्कुल जी. और गीत जिस तरीके से आप लोग पसंद करते हैं, आय हाय मजा आ जाता है उनमें. हाँ जी, तो आज इट्स 14th of May, और 14th of May के दिन क्या क्या मनाया जाता है? तो आज मनाया जाता है ऑनलाइन रोमांस डे, वर्चुअल रोमांस, हाँ, नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे, इंटरनेशनल चुवावा एप्रिसिएशन डे, डॉग्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके पहले, नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे, हाँ जी, उसके बाद है नॉइज एक्शन वीक, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स फॉरएवर डे, इंटरनेशनल डायलिन थॉमस डे, नेशनल डीसेंसी डे. जी, डिसेंटली बिहेव करना चाहिए. इसके लिए भी डिसेंसी कैन साउंड ओल्ड फैशन लाइक समथिंग दैट बिलोंग्स इन एटिकेट बुक्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज. इन रियलिटी इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल्स अ कम्युनिटी हैज. डिसेंसी इज द एवरीडे चॉइस टू ट्रीट पीपल विद बेसिक रिस्पेक्ट इवन व्हेन ओपिनियंस क्लैश, स्ट्रेस रन्स हाई और नोबडी इज वॉचिंग यू. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग. रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा. कभी भी पोलाइट वे में अपनी चीजें सामने वाले को बताइए. देखिए, जो चीज आप ले नहीं सकते ना, वो चीज कभी दूसरों को देना, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी वही कहेंगे कि भाई अगर आपने हमें ये चीज कही है तो बी रेडी टू टेक इट दैट वे, है ना. सो जिस तरीके से, और देखिए डिसएग्रीमेंट्स हर रिश्ते में होती है. डिसएग्रीमेंट डजंट मीन दैट पर्सन हेट्स यू, इट्स जस्ट दैट यू टू पीपल डोंट अग्री ऑन अ सर्टन लेवल बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं. कितनी सिंपल चीज है ना, लेकिन ना जाने क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. कोई ना. नेक्स्ट ट्रैक आपको फिर वही दिल लाया हूँ, सुना रही हूँ, वही ट्रैक ले चलेगा न्यूज की तरफ.
3: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू अ चांस टू विन व्हाइल मेकिंग योर मनी गो इवन फर्दर विद एसबीआई यूके.
4: ट्रांसफर £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Karatino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Karatino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Karatino Better Ghee.
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio, Greater London, Leica Radio, Greater Manchester, and Leica Gold Radio. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
4: The Evening Show with Ashwini.
0: Where Bollywood comes first.

0: थर्ड आवा में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है। पहला गीत हमने आपको सुनाया था खिलाड़ी फिल्म से, विच वाज रिलीज्ड इन 1992, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में वाद आ रहा सनम। व्हाट अ फैबुलस शांत एकदम प्यार भरा ट्रैक। उसके बाद आप बैठ मेरे पास, यादों की कसम, इस फिल्म से सुनाया ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आप बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। अभी ये गीत ना सिर्फ आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को डेडिकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली उन्हें तो कर ही सकते हैं, साथ ही आपके बच्चे भी हैं, आपकी बेटी भी है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, आपकी बहन भी है, आपकी मम्मी भी है, आपके पापा भी। आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे देखती रहूं, है ना। ये वाला होता है, कभी कभी प्यार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नैन, आपकी जो प्यार भरी एनर्जी है वो अपने आप सामने वाले को फील होना शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ लव इज ऑल अबाउट। और हम जो गीत संगीत यहाँ पे आपको सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं प्यार को दर्शाता है शब्दों से। नेक्स्ट ट्रैक जो सुनाने वाली हूँ, दैट इज अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम बालिका बदू। आज बिकॉज मैं आप समझ चुके हैं कव्वाली रहेगी या होगी गजल, तो बिल्कुल आज कव्वाली प्ले करने वाली, और बिकॉज इट्स अ बिग कव्वाली सो थोड़ा लेट मैं सुना रही हूँ वो कव्वाली आप सबको। अभी जो नेक्स्ट ट्रैक आने वाला, दैट विल बी अमित कुमार की आवाज में बालिका बदू से। अगेन व्हाट अ फैबुलस ट्रैक, बड़े अच्छे लगते हैं।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Ye hai
1: Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling today, you could get up to 129 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. सो इट्स 21 मिनट्स पास्ट 9. घड़ी पे जब 21 मुझे भी दिखा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये जो होते ना, ये एंजेलिक नंबर्स होते हैं, एंड पीपल हु नो अबाउट एंजेलिक नंबर्स, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू नो समथिंग इज इन अलाइनमेंट इन योर लाइफ, तभी तो आपको एक जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं. फैंटास्टिक, दिस इज थ्रिलिंग थर्सडे. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो के आपने कहा कि आप बैठ मेरे पास प्लीज, क्या ये गीत आप मेरी मम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी मम के लिए ये गीत हमारी तरफ से डेडिकेटेड. नलिनी जी, आपने कहा आपके बेटे का बर्थडे था, तो उसे बहुत सारी शुभकामनाएं लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से जो लंदन में है, एंड लाइका रेडियो जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर में है, एंड अश्विनी जो कि फिलहाल स्टूडियो में है, हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. द नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है आर्टिस्ट ऑफ द वीक महेंद्र कपूर के आवाज में, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. एज आई सेड कि मैं कव्वाली थोड़ा लेट सुनाने वाली हूँ, लेकिन आपकी हमारी गपशप यहाँ पे जारी है. किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, चाहते कि हम विश करें तो जरूर हमें मैसेज करते
1: रहेंगे. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. The one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May, at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasam.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2020. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
9: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
10: You mean Subtle Travel?
9: Yes, देश विदेश में दूर.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Leica Radio mobile. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
1: Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.3 Indian rupee, 373.27 Pakistani rupee, 435.88 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 83.26 Afghani.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
2: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
3: Leica Radio.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. It's 37 minutes past 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. कव्वाली, बिल्कुल आज हम प्ले करेंगे कव्वाली आपके लिए. एंड व्हाट अ फैंटास्टिक कव्वाली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. द बर्निंग ट्रेन विच वॉज रिलीज इन 1980, उस फिल्म से पल दो बल का साथ. क्या बात है जी. अच्छा, ये वाली कव्वाली ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट पे लग चुकी थी एंड एजाज जी ने कहा कि अश्विनी जी कैसा हो अगर आज आप ये कव्वाली प्ले करें. एंड देखिए ना कि आपके और हमारे म्यूजिकल विचार कितने जुड़ते हैं. तो जिन लोगों ने भी आज लेट ज्वाइन किया, कल जरा जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा शाम 7 से 10 बजे तक. कल आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, बड़े मस्ती भरे गीत होंगे, खाना वाना खा के बैठिएगा क्योंकि सारी की सारी कैलोरीज हमें बर्न करनी है. लास्ट दो ट्रैक्स के साथ आपको छोड़ के मैं जा रही हूं, लेकिन कल मिलने का वादा जरूर. हमेशा की तरह यही कहूंगी कि जीवन बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए एंड साथ में प्यार जिंदगी जीने के लिए काफी है. तो भाई कोई भी अपने पावर का यूज ना करे, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. तो फ्राइडे है, कल मस्ती मजा इंटरेक्शन होगा. हमेशा की तरह एक चुलबुला सवाल लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी आप सबके लिए. लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी प्यार जिंदगी है एंड दैट इज फ्रॉम फिल्म हीरो. प्लीज अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं शाम को. तब तक टाटा बाय, गुड नाइट.
3: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
3: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
3: Leica Radio.

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax. I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
9: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
9: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल.
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
10: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
11: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
13: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
14: खुद से भी ज्यादा.
12: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
14: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
12: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
11: Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. The new Asian sound for the Northwest. This is Leica Radio Greater Manchester.
15: Leica Radio.
11: Manchester's biggest love songs continue. Leica Radio.